0: सरकार मेडिकल सेवामा जताउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि?
1: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सरकार मेडिकलमा एकपटक।
2: सबका मेडिकल सेवा का खास सेवाहरू ओपीडी सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, ल्याब अर्थात प्रयोगशाला सेवा, ईसीजी सेवा, मेडिकल सेवा, ईएनटी सेवा, प्लास्टर सेवा, बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। डाक्टर हेमन्त स्वार, टिकापुर ब्लक नम्बर 7, गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड टिकापुर। फोन नम्बर 091-560-095, मोबाइल नम्बर 98-484-27-359।

0: वृद्ध हराएको सूचना। टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर एक नयाँ टीकापुरका 92 वर्षीय नवराज गिरी दाह्री पालेका, कपाल छोटो, पहेलो जकेट र लुङ्गी लगाएको, हातमा लट्ठी र कमण्डलु बोकेका, काँधमा झोला भिरेर यही जेठ 21 गतेका दिन बिहान 7:30 बजेतिर घरबाट बजार जान्छु भनी अटोरिक्सा चढ़ेर निस्किनु भएको र टीकापुर शिव मन्दिर पुगी फर्किने क्रममा हराएकाले देख्नुहुने महानुभावले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा छोरा शिवराज गिरीको फोन नम्बर 9820-3986-19 खबर गर्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।
1: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटी। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उक्र संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच, फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नम्बर 0915600595 ओ मोबाइल नम्बर 9848423159।
2: कोही सबै पेपर उर्को सकिया हो
3: सकियो
2: तेरो पर्सनल मोबाइल नम्बर त ब्लक गरी
3: पर्सनल मोबाइल नम्बर त उही दिनै टेलिकमको अफिस जाइबर ब्लक गरिबर आयौ
2: कोही बैंकमी त्यो त अद्दु पढन्छ भ आफ्नो मोबाइल नम्बर बदल्नु वा ब्लक भएको आफ्नो बैंकलाई नै जानकारी दिनु पढन्छ र आफ्नो बैंक खाताको जानकारी औरका हातमै पुग्दो बठे सचेत बनौ
3: सतर्क रहौ ठगी बठै बचौ।
4: सिद्धार्थ बैंक पठै जनहितमै जारी सन्देश।
5: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई।
6: टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: के तपाईलाई थाहा छ?
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाइ शाखा टिकापुर कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तू हिन वहाँ पठाई तो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, कहा कना हो बाबा के ओष्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरत।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं सीख।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस काटस बाटिन, ये बुढ़ोक ढंग कबू फसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ल झोला है मरम फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: टीकापुर नगरपालिकाको सूचना नगरपालिका भित्र संचालित व्यवसाय दर्ता नवीकरण गर्न गराउनुका साथै दर्ता नगरी संचालन भइरहेका व्यवसाय अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित ओडामा दर्ता गरौं
5: भवन निर्माण मापदण्ड 2072 अनुसार नयाँ घर निर्माण गर्दा घर नक्सा पास अनुमति लिएर मात्र निर्माण गरौं
4: यस टीकापुर नगरपालिका कार्यालय वरिपरि लगायत नगर क्षेत्रभित्र व्यवसाय गरी बसेका व्यापारीहरूले पसल अगाडिको सार्वजनिक जग्गा बाटोमा टहरा लगाई पसलको सामग्रीहरू राखी व्यवसाय गरिरहेको र त्यस्ता कार्यहरूले सड़क दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकोले त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरौ
5: नगर क्षेत्रभित्र रहेका घुम्टी ठेलाहरू तथा पसलमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यापारीहरूले आफ्नो पसलका अगाडि यथाभावी फोहोर गरी उचित व्यवस्थापन नगरेको देखिएकोले यथास्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गरौं र गरौं टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे ठारू भाषक खोज खबर में यहां उपरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अभ्यर्थने खुक्रे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz के संगे अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से। मंत्री फेरबदल के चक्कर में पश्चिम प्रदेश सरकार नवयुक्त 5 मंत्री के शपथ। टीकापुर में 5 वर्ष तरक 75 जना कुपोषित हो 272 जने मध्यम कुपोषित बाल बालिका भेटाइन। संघ सरकार से प्रदेश से ऐनादान कर्णाली मध्य से सबसे ढेर सुरपश्चिम के लाख 16.1 करोड़ 47 लाख विनियोजन। उछाला के समस्या है सामान्य रूप में लेना नहीं हुईना छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकृति बराल के कहाई। पूरा खबर सुरपश्चिम प्रदेश सरकार के कांग्रेस मंत्री सहभागी सक्कु मंत्री राज्य मंत्री है सोमवार के फिरता बोलाइल समेत बोला के नया पठागिलवा। नवयुक्त मंत्री हुक्रमा आर्थिक मामिला में विक्रम सिंह धामी, सामाजिक विकास मंत्री में बेल बहादुर राणा मगर, उद्योग पर्यटन तथा वातावरणीय मा समेत मान बहादुर रावल, आर्थिक मामिला राज्य मंत्री में जुना कुमारी दानियो, सामाजिक विकास राज्य मंत्री में मधुदेवी भारती नियुक्त हुईलवाट वहां के सोमवार के सांस के प्रदेश प्रमुख नजीर मिया समीक्ष शपथ लेहल के बाट कांग्रेस भीतर के उत्पन्न किचालो के कारण सबको मंत्री फैल बदल के अवस्था आयल के हो। आगामी आर्थिक वर्ष के बजेट प्रस्तुत करे पर्ना दिन ऐना 4 दिन के बाकी बा। असिन बेला सरकार प्रदेश के समेत विकास के खाका कोर्ती बजेट निर्माण में बिप्याल समेत बतागिल बा। मनो सुरपश्चिम भर समेत बजेट निर्माण है प्राथमिकता से फिर सरकार फेरबदल के समेत खेल शुरू हुई। करीब 2 साता से सरकार फेरबदल के शुरू करल बतागिल बा। सुरपश्चिम मंत्री हुकराव सबको जाने आपन पद जोगेना समेत ध्यान में बिप्याल रहल बतागिल बा। सुरपश्चिम में कांग्रेस मा एमआरए के संयुक्त सरकार रहलबा। सोमवार के कांग्रेस से यागे मंत्री रहलक सकुजान फेरबदल करलबा। कल से यागे कांग्रेस कोटा मन से आर्थिक मामिला मंत्री रहल बहादुर सिंह थापा, सामाजिक विकास मंत्री मेघराज खड़का, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री शिवराज भत्ता, सामाजिक विकास राज्य मंत्री सरस्वती खड़का हो। आर्थिक मामिला राज्य मंत्री मा प्रकाश बहादुर बम हे फिरता बोला के लौ मंत्री पठागी लेखो। कांग्रेस फितर के उत्पन्न किसलो के कारण बजट के मुख में मंत्री फेरबदल के अवस्था लेखो। कांग्रेस के 9 जाने सांसद से समेत जेठ 18 में सांसदीय दल के नेता समेत रलक मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह विरूद्ध के अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता करल पाछे मुख्यमंत्री शाह अप्ठारो में पड़ल रहे। कांग्रेस के कुल 18 जाने सांसद रलक में सचेतक गीता चौधरी, सांसद हुकरनमा मान बहादुर रावल, दीवान सिंह बिस्ता, पदम बहादुर शाही, दम्मरी महारा, तुलसी देवकोटा, उस्तक बेल बहादुर राणा मगरो, ललिता सुनारो, जुना कुमारी दानी से अविश्वास के प्रस्ताव में हस्ताक्षर कर रहे। वहां उकरा सभापति गगन थापा समूह के हैं। अविश्वास के प्रस्ताव से अगुवाई करलक सांसद दीवान सिंह बिस्ता से समेत कांग्रेस के कुल सांसद के संख्या 18 रलक। म समेत सांसद प्रकाश बहादुर देवबा महीनों आगे से अमेरिका गैलक ओर से 9 जाने बहुमत हुईना जिकिर करगिल रहा। मनकुज घंटों में समेत सांसद दमरी महरा से मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन में हस्ताक्षर फिरता लेलक बटायल पासे 8 जाने हुई पासे मुख्यमंत्री शाह से के पद बचल रह। मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह विरूद्ध के दर्ता हुई पासे विवाद मिलेना। पार्टी में सह महामंत्री उदय शमशेर राणा और केन्द्रीय सदस्य रमेश केसी धनगढ़ी आयल रहें। राणा के पहल में अविश्वास के प्रस्ताव समेत अंततः मंत्री के भागवंदा में मिला के टुंग्यागी लेख हो। एमाले के संयुक्त सरकारमा कंग्रेस के भागमा मुख्यमन्त्री तीन जाने मन्त्री और दुई जाने राज्यमन्त्री करके छ जाने बाटै कलसे या आगे कंग्रेस के भागमा परल सक्कु मन्त्री मुख्यमन्त्री देउवा समूहसे रह कलसे भागवन्दामा दुई जाने केल मन्त्री और एक जाने राज्यमन्त्री असन्तुष्ट समूह सभापति थापा के पक्षधार हो। मुख्यमन्त्री पक्ष से समेत आर्थिक मामिला मन्त्री हो। एक राज्य मन्त्री से लेना समझदारी फिल बताइल बा। मुख्यमन्त्री पक्ष से आपन भाग में पर्लक मन्त्री उपरन के नाव सहजे टुंग्याल रह गलसे या आगे प्रमुख सचेतक रहल विक्रम सिंह धामी आर्थिक मामिला मन्त्री मा नियुक्त हुई पाछे भर समेत मधु भारती हे सामाजिक राज्य मन्त्री बनागिल बा। सरकार से वैशाख महिनामा बाल बालिका हुकरण के पोषण अवस्था सुधार गर्न लक्ष्य सहित राष्ट्रीय पोषण लेखा जोखा अभियान संचालन कल के हो। टीकापुर नगरपालिका में फिर स्वास्थ्य कर्मी परिचालन करके पोषण के लेखा जोखा कर गिलवा। लेखा जोखा के नतीजा हेरबेर टीकापुर में बाल बालिका हुकरण के पोषण में ढेर काम करना देख पड़ल बा। कल से टीकापुर नगरपालिका से पोषण के अवस्था सुधार कर अलग प्राथमिकता देहल बा। पांच वर्ष तक 75 जाने बाल बालिका कुपोषित बाटन कर अभियान के क्रम में 1864 बाल बालिका में पोषण परीक्षण कर 75 जहन में शीघ्र कुपोषण और 272 जहन में मध्यम कुपोषण देख पड़ल। पोषण सुधार में थप प्राथमिकता दै के काम करे पर्ना स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलबहादुर रावल के कहाइबा। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
2: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पताल को ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849858808।
3: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयको सार्वजनिक सुनवाई हुने बारेको सूचना। जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 प्रदान गरेका सेवा, सम्पन्न गरेका काम, योजना र वडा कार्यालयसँग सम्बन्धित विविध विषयमा सार्वजनिक सुनवाई हुने भएकोले तपाईँका गुनासा, प्रश्न वा सुझाव सहित तफसिलको मिति, स्थान र समयमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सरोकारवालाहरू, सेवाग्राहीहरू, गैर सरकारी संस्था, वर्गर, नागरिक समाज, युवा, समाजसेवी, बुद्धिजीवीहरूको उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। सार्वजनिक सुनवाई हुने मिति 2083 साल जेठ 26 गते, समय दिउँसो 2 बजे, स्थान सुवर्णपुर स्थित कृषि भवन, जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालय सुवर्णपुर।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। छाला के समस्या है सामान्य रूप में लेना वा डाक्टरों के सलाह बिना नहीं तमाम क्रीम लगायत के प्रयोग करना मनमा छाला के समस्या हुईतिरलक पागिल बा। टीकापुर अस्पताल लगायत के तमाम स्थान में बिरामी जांच करतिरलक छाला तथा इंडक विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकृति बराल से ऐसी बटोले खुआई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के कार्यक्रम आज को चर्चा में बोलती डॉक्टर बराल से व्यक्तिगत सरसफाई के अभाव के कारण फे यहां मनमा छाला के समस्या बढ़तिरलक बटोले बाट। आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के लाख संघ सरकार से प्रदेश से जैना अनुदान और समेत कर्णाली मध्य प्रदेश से सबसे ढेर रकम छुट्यागिलवा। विकास के सूचांक में 500 करोड़ ई दुई प्रदेश से संघीय अनुदान ढेर पाइलवा। अंतर सरकार के वित्तीय हस्तांतरण प्रदेश स्थानीय तह 2063-64 के अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष के लग 4 अरब 24 अरब 27 करोड़ 74 लाख विनियोजन करगिल बा जेकर मध्य स्थानीय तह 3 अरब 14 अरब 63 करोड़ 39 लाख हो स्थानीय तह 1 अरब 9 अरब 65 करोड़ 35 लाख बराबर के बा संघ सरकार से प्रदेश और स्थानीय तह समानीकरण सशर्त विशेष संपूरक शीर्षक में यह अनुदान दैगिले हो। अब लघु साना तथा मझौला व्यवसायी से समेत तमाम डिजिटल माध्यम से ऋण लेना पैना कहलवाकल से राष्ट्र बैंक भुगतानी विभाग के समेत डिजिटल माध्यम से प्रवाह हुईना कर्जा संबंधी समेत मार्गदर्शन परिमार्जन करके प्रवाह हुईना लघु साना तथा मझौला व्यवसाय उपकरण के लाख डिजिटल कर्जा के समेत सुविधा ठप करल बता गिलवा कलश आगे बैंक तथा वित्तीय संस्था में समेत तलबी एवं पेशागत तथा व्यावसायिक आमदानी जैसे जमा हुईना खाता रलक प्रकृति है व्यक्ति है केल समेत विद्युतीय कर्ज उपलब्ध करेल रहा अब लघु साना तथा घरेलू व्यवसाय उपकरण उ कर्ज उपलब्ध करेना कहलबा लघु साना तथा समझौता मझौला में समेत व्यवसाय उपकरण फिर डिजिटल कर्ज सुविधा उपलब्ध करेना लाख विद्यमान कार्यविधि संशोधन करगिल राष्ट्र बैंक भुगतानी विभाग के प्रमुख निश्चल अधिकारी बटोले बाटें। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रहल मन्त्री फेरबदल गर्न निश्चित हुल पासे विरोध करगिल वा असन्तुष्ट समूहका सोमबार के धनगढ़ी स्थित एमाले सांसदीय दल के कार्यालयमा नाराबाजी तोड़फोड़ पार्टी के प्रदेश कार्यालयमा तालाबन्दी करल वा नाराबाजी कर्ता हुकरन के सांसदीय दल के नेतामा राजेन्द्र सिंह रावल के विरूद्धमा नारा लगाएल हैं। जानकी गांवपालिका के सामुदायिक विद्यालय में अध्ययनरत अपंगता रहल बाल बालिका हुकरण प्रोत्साहन करने उद्देश्य से शैक्षिक सामग्री वितरण करगिल बा उपाध्यक्ष लालमती देवी कठरिया के अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में सामुदायिक विद्यालय में अध्ययनरत 29 जाने अपंगता रहल बाल बालिका हुकरण के सिकाय प्रक्रिया है सहज बनैना आवश्यक शैक्षिक सामग्री वितरण करगिले हो। कार्यक्रम में अपंगता रहल बाल बालिका हुकरण के शिक्षा में पहुंच सहभागिता थप सिकाय उपलब्धि अभिवृद्धि करने उद्देश्य से शैक्षिक सामग्री प्रदान करगिल उपाध्यक्ष कठरिया बटोले बाटें। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पाछ फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
4: कर्णाली नमूना मावी टीकापुर में शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 में विभिन्न संकाय में भर्ना खुल्यो।
5: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टीकापुरमा विज्ञान र इन्जिनियरिङ संकायमा उत्कृष्ट नतिजा सँगै शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11मा कानून होटल म्यानेजमेन्ट मानविकी र शिक्षा संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुलेको सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा जानकारी गराइन्छ। सिट सीमित छ, आजै सम्पर्क गर्नुहोस्।
4: जेहेन्दार प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी र खेलाड़ीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ।
5: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टीकापुरका विशेषताहरू
4: फराकिला कक्षाहरू
5: विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला भएको
4: पुस्तकालय तथा ई लाइब्रेरीको व्यवस्था भएको
5: खेलकुद सुविधा
4: कम्प्युटर शिक्षा
5: स्वच्छ पिउने पानी
4: क्यामेराको निगरानी र यातायातको सुविधा पनि छ।
5: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टीकापुर कैलाली सम्पर्क नम्बर 98584-24167।
4: तपाईको भविष्य निर्माणको एक सहयात्री।
6: वर्षिनी विश्वभरि नै लगभग 14 करोड़ बाल बालिकाहरू बाल विवाहको शिकार हुन्छन्। किशोर किशोरीको 20 वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई नेपाल सरकारले बाल विवाह ठहर गरेको छ। शारीरिक मानसिक र व्यावहारिक अपरिपक्वताका बावजुद गरिने बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिमहरू जस्तै अशिक्षा असमानता बिग्रदो स्वास्थ्य एचआईभी एड्स बलात्कार घरेलु हिंसा बहुविवाह आत्महत्या लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। नेपालको कानून अनुसार बाल विवाह सामाजिक अपराध हो। बाल विवाह गर्ने, गराउने र सामेल हुने सबैलाई कसुर हेरी 3 वर्ष जेल र 30,000-75,000 सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ। बाल विवाहको जोखिम अझ उच्च रहेको हुँदा समुदायका अभिभावक, शिक्षक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ लगायतका सबैमा आफ्नो समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनी सचेत रहन अपील गर्दछौ। बाल विवाह विरुद्धको अभियान।
7: जानकी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
8: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
9: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
8: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
9: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी ही जाए।
10: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा।
11: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नम्बर 9860071024 ओ 9846-77417।
0: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के तैयारी स्वरूप शुरू करल बा। जिला अधिवेशन मा 56 जिल्लामा सम्पन्न करल बाकलसे प्रदेशभरके समेत देशभरके 77 जिल्लामध्ये बाँकी 12 जिल्लामा अधिवेशनके समेत तमाम कारणवश रूकल निर्वाचन प्रक्रिया आगे बढ़ेन तयारी हुई रहल। राष्ट्रवासले जनाएल बा। राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीके केन्द्रीय निर्वाचन विभागके प्रमुख भुवन केसीले 12 जिल्लामा निर्वाचन प्रक्रिया चल्ती रहेको, 1 जिल्लामा अधिवेशन स्थगित हुन तथा 5 जिल्लामा अभिन फेरि अधिवेशन हुन बाँकी रहल जानकारी दिइगिल बा। राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी से पहिले अधिवेशन के तयारी स्वरूप समेत जेठ 23 गते से लेकर देशभर जिल्ला अधिवेशन शुरू कर रखो। पार्टी की केन्द्रीय कार्यतालिका अनुसार जिल्ला अधिवेशन ओराय लगते मंगलवार से नई सातु प्रदेश के प्रदेश अधिवेशन शुरू करना कहलवा। सरकार से बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र में रोग नियंत्रण हो अन्यत्र फैलते रहे नई देना आकस्मिक कार्य शुरू करल बा। पशु सेवा विभाग के महानिर्देशक डॉ उमेश दाहाल से सोमवार के पुष्टि हुआ 10 जिला में 72 फार्म में करीब 5,15,000 पंछी नष्ट करल जानकारी दिले बाटे। सबसे ढेर लायर्स कुखुरा व समेत स्थानीय जात के कुखुरा में ढेर प्रभावित देखगिल बताइल बा। सरकार के निर्देशिका अनुसार खटल द्रुत कार्य टोली से 7,00,000 अंडा 183 समेत दाना फे समेत नष्ट कर बताइल बा। दाहाल के अनुसार कुछ सात आगे झापा, मोरंग, सुनसरी जिला में देख पड़ल बर्ड फ्लू, पाछे आगे समेत महटरी, बारा, चितवन, हुईती, काठमाण्डू, भक्तपुर, ललितपुर, पाछक समय में नलप्रासी जिला में बर्ड फ्लू देख पड़ल बा। एक उपचार नहीं हुई रलकोर से एक थोकेल उपाय रोग देखना साथ जत्र हाली नियंत्रण करके समेत सेकला से फैले नहीं देना रहल बाकल से यही से पंछीजन्य उत्पादन समेत नष्ट करना के विकल्प नहीं हो। एक रोग नियंत्रण के लाग पशु चिकित्सक तथा पशु स्वास्थ्य कर्मी हुकरा और रात खट्टी रहल बताइल बा। और निर्वाचन आयोग से संघ प्रदेश तथा स्थानीय तह के उम्मीदवार हुकरा पराजित वह व्यक्ति वह क्षेत्र व समेत तह के उपनिर्वाचन बाहेक के और निर्वाचन में भाग ले नहीं पैना कानूनी व्यवस्था करना प्रावधान करल बा। निर्वाचन संबंधी कानून है संशोधन और एकीकरण करना बनल विधेयक में आयोग के एक तह व समेत क्षेत्र में पराजित उम्मीदवार है समेत अन्य निर्वाचन प्रतिस्पर्धा मन से समेत बन्देज के प्रस्ताव करल बटवागिल बा। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैन से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से मंत्री फेरबदल के चक्कर में सुर पश्चिम प्रदेश सरकार के नवयुक्ता पांच मंत्री शपथ टीकापुर में पांच वर्ष तरक 75 जाने कुपोषित 272 जान में मध्यम कुपोषण के बाल बालिका फैला पर्ने संघ सरकार से प्रदेश से ऐनानुदान कर्णालियों मधे समेत सबसे ढेर सुर पश्चिम के लाख 16,41,47,00,000 विनियोजन उछाला के समस्या है सामान्य रूप में लेना नहीं होना छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकृति बराल की कहाई लिटा बकलक थारू भाषा खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान खबर समय बीएबे के खोज खबर से मैं रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाम सुनते बिरा
12: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्मा टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार
13: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ
12: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
13: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
12: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
13: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
12: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
13: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
12: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
13: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
12: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
13: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म
12: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 0008 र 9825 63 77 72
14: वृद्ध हराएको सूचना टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 नयाँ टीकापुरका 92 वर्षीय नवराज गिरी दाह्री पालेका कपाल छोटो पहेँलो जकेट र लुङ्गी लगाएको हातमा लट्ठी र कमण्डलु बोकेका काँधमा झोला भिरेर यही जेठ 21 गतेका दिन बिहान 7:30 बजेतिर घरबाट बजार जान्छु भनी अटोरिक्सा चढेर निस्किनु भएको र टीकापुर शिव मन्दिर पुगी फर्किने क्रममा हराएकाले देख्नुहुने महानुभावले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा छोरा शिवराज गिरीको फोन नम्बर 9820-39-86-19 खबर गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ
15: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: गतिविधि कोई कई ना ओ करे ना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठ भी। OCMC स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी।
1: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी। यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।
2: चेली हेदी दे बालाई लोटरी पड़ो बण के बैंक को विवरण दिया पैसा खाता में आई जान बण
3: धैरै बा तुमने लोटरी भर रही थे। अब
4: आछी न क्या हो रे चेली लोटरी पड़ा तो निको हो
3: कभी न भरिया लोटरी कसरी पड़न छ बा ईशा मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक भाइबर कायमीले आयाले कबै जनपतिया फोने आयाल गई आफ्नो विवरण कबै जन दिया कसैले वित्तीय संस्थाले तुम्हारो पासवर्ड पिन आदि कबैले माग्दैन यो त बैंक आफैले नै माग्दैन।
5: सतर्क रहौ ठगी बटे बचौ।
3: सिद्धार्थ बैंक पठाई जनहित में जारी संदेश।
6: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दी एक भुवा जागिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनी न पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटास तरह तुहार रामपुरान दीदी ये नि सामुएल ज्वेलर्स में से गहना बना कान से के कतरा सुघर बना कन लबाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाट वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864841208 ओ 9846939261
2: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर
3: अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ
2: ससानो कुरामा तनाव हुने
3: बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने
2: कुलटमा लाग्ने
3: छटपटी हुने
2: मुटु धेरै ढुकढुक हुने
3: जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 13 गते 20 गते र 27 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नु होला टिकापुर अस्पताल टिकापुर कैलाली

0: कबू कापी रहे कबू पेन्सिले रहे कबू झल फटा का आज का हो बाबा फिर होस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक था
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर मरलक रख गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला आन लगाती ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनंद झोला जस कटरस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रत गैया झोला उठो
2: झोला उठो
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल
0: तू वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
0: ला फेरी यो गाड़ी ने धोखा दिने भयो जहिले पनि बैटरी कई समस्या बैटरी कई समस्या यो टीकापुर में पनि बैटरी कहाँ पाइएला टेंशन में भाई मत अब
4: भाईलाई थाहै रहिन छ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टर में लाग्ने बैटरी पनि सुपट मूल्य में टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्य में पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुर में पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाई टीकापुर जमरापारी छ नि संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
5: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनी को 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
6: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रांड को मोटरसाइकल ट्रैक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबी मा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 9848528 28

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उक्र संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: युनाइटेड एकेडमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो।
2: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यवहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
1: पढाइ हुने विषयहरू
3: अनिवार्य नेपाली,
1: अनिवार्य अंग्रेजी,
3: सामाजिक गणित,
1: ऐच्छिक लेखाशास्त्र,
3: ऐच्छिक वित्तशास्त्र,
1: ऐच्छिक अर्थशास्त्र,
3: कम्प्युटर विज्ञान,
1: भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू,
3: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि,
1: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि,
3: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि,
1: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म। सीमित सिट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि 091-560-738, 091-561-446, 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77।
2: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टीकापुर कैलाली।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल तू
0: वह मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
5: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेडस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पताल को ठेक्कै अगाडि संपर्क नंबर 9849585808
6: उही सबै पेपर उर्को सकिया हो
7: सकियो
6: तेरो पर्सनल मोबाइल नम्बर त ब्लक गरी
7: पर्सनल मोबाइल नम्बर त उही दिनै टेलिकम का अफिस जाइबर ब्लक गरिबर आयौ
6: उही बैंकमी
7: हाँ क्या अद्दु पड्यो बा
6: त्यो त अद्दु पड्छ बा आफ्नो मोबाइल नम्बर बदल्नु वा ब्लक भएको आफ्नो बैंकलाई जानकारी दिनु पड्छ र आफ्नो बैंक खाताको जानकारी औरका हातमै पुग्दो बठे सचेत बनौ
7: सतर्क रहौ ठगी बठेई बचौ
8: सिद्धार्थ बैंक पठेई जनहितमै जारी सन्देश
9: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
4: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर
10: अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ
4: ससानो कुरामा तनाव हुने
10: बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने
4: कुलटमा लाग्ने
10: छटपटी हुने
4: मुटु धेरै ढुकढुक हुने
10: जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 13 गते 20 गते र 27 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
11: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: आई बुढल्ला सुन्तो कि नै वानन्दी भुवा जागिले न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा अस्तरा तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छेकले कत्रा सुघर बना कन्ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में गल गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864841208 ओ 9846939261
2: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी जब सम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुल के विरोध करी भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाख सबको जाने सहयोग करी
3: अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय महेन्द्रनगर कंचनपुर से जनहित में जारी संदेश
4: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
5: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
6: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
4: डेलिभरीका लागि
6: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
4: टिकापुर कैलाली
7: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870 10672
5: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: आफै फैसला। ए बा आइगई क्या? आज त पहिला नोकरीको पहिला महिना तनखा खाइकन आएकी होली मेरी चेली।
1: तनखा खाइकन होइन बुवा, तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारिकन आएकी छु। हो भने बुवा, पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफमा त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्टका समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाँची मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
0: ठिक गरिबा, आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
1: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त, होइन बुवा? सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 मि सम्पर्क हरे।
2: घर त जेन्टेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
3: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठभन्दा सस्तो, देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
2: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
3: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
2: अब त म ढुक्क।
4: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरा पारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
3: मोबाइल नम्बर 98-48-51-43-26। जमरा पारी, टिकापुर, कैलाली।
5: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
6: कोट पेट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
5: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
6: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे, जय से जय।
5: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।

0: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
0: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
1: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
0: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
0: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
1: ईसीजी सेवा,
0: डिजिटल एक्सरे सेवा
1: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
0: फोन नम्बर 98484 27359 र 98482 43 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
2: ए रुक रुक रुक,
3: के भयो, किन कराएको यस्तो
2: दाई? यस्तो पनि हुन्छ र? 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
4: डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड। यति मात्र होइन, लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
2: हो र? हो नि, एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड।
5: अझै यो सुपर भ्यालु प्याक *123# डायल गरी वा एनसेल एप मगाइ लिनुहोस्। एनसेल नेपालकै लागि।
6: रजनी वहाँ 62 नम्बर लट्ठी बा देखाओ तो लिखाओ तो
7: मुर्गी दाना देना जाला म काकर लट्ठी खा देती अब ना
6: एक तो तपा बा का मुर्गी न खा रखे लट्ठी से डिगेले से बक्सा की आनो हारी
7: छापन घिस्याई चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस सर बिहन घर भीतर आई लागी कल से भगे दी
6: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी वादी कहीं का भगाई खोज लखो का
7: आरम कीड़ा फटिंगा मुँह साफ सीर निचा कर कहीं का फलाम को जारी लगा बात तपा मुर्गी खेती पुगाई नहीं थे कि बिहन अपना दाठी दूर रिना
6: हो बिना का करना हो तपा देखती की डर नागर लग्न रहे देव तपा तो अपन घूम का बारी वोट कर गिनता
7: हमारे खेल सापन से डरे ना नहीं होगी मुकर थे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलाई लगी पति रक्षा करत लाग व अपन बचाव करत लाग साम दस ना कर था
8: सापन से दूर रही सापन रीस नी लगाई वा नी जिस गई साप मने देखा डरे था निचलाख दूर रहे साप नि डस्ट तर मुक्र खैना खुवाज बाहिर निस्किँदैन अब घाँस काटा बेल छाला बेल ड्याङ्ग बेल छुबेको छ मनै मही मारकलाकबाट कना सबस्क पट्टि र छ्याकना क्रममा साप दस लाख रह मनै सापन व्यक्ति कि मारकलाग रह ओसीको करबे फेर साप दस लाख रह
9: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइत लाग आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org मा हेर सेटिथा
10: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रांका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

जय गुरु बाबा। घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपने के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम अंताक्षरी अपने के लक्ष्य सराह के बैठक सकू रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग्रह स्वागत के संगे अभिवादन कर चाहतो मैं मिशन ओमिका भाई टेक में बैठ के साथ देते हैं बाबू रत्नापुर मगर और मैं बात अपन के अपने संग्रह मैं विशन सगारे कृष्ण बा हाल खबर बिल्कुल कुशल मंगल आराम हुई दी मैं फिर एकदम आराम बाटो अपने के फिर एकदम आराम बाटी कना भरपूर आसने बाटो संगारी गर्मी बा पकई फिर काम के समय आई टी बा घाम ज्यादा बढ़ती बा तब हमारे गर्मी के कारण अपन स्वस्थ है अपन है ख्याल कई के सही काम कई भी करना मैं आप लोग कहना चाह रू काम में बाहर निकलना बा कर से अतरा गर्मी बा छाता लेके निकल भी और से काम करे बाजी कुछ कुछ मतलब अपन सहजता अपना के ताकि हमन घाम ना लागे कना सोच बना के काम मतलब बढ़िया उपाय अपना के काम कर भी और काम जरा घाम लागत कल से एकदम नंग ढोंढा हुई ना के चलन बा जस्ते लुगा निकार के काम करना केकरो केकरो बानी बा वैसे ना कर भी वैसे कर भी तो डायरेक्ट छाला में असर पड़ा तो बरु पार्टी लुगा हुई से फिर लगा के काम कर भी करा मैं हम लोग कहना चाहम कहती घाम एकदम ख्याल करे पना जरूरी रहत और पानी फिर एकदम प्रशस्त पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए शरीर में चाहना पानी फिर पी भी कना में जाम और अपन ख्याल करती काम कर भी गर्मी बा ढेर गर्मी में ढेर गर्मी कारण से हमारे शारीरिक अस्वस्थ भी पुगा तब हमारे उचित में हमें एकदम ध्यान देख पाना जरूरी बा कना में कहना चाहूं कहती कार्यक्रम अंताक्षरी खेल है क साइकिल से क का की असाइकल से अ आई कोई भी अक्षर से अंताक्षरी खेले एवी शून्य 91 5 61 255 अथवा 09156 1255 नंबर हो ई नंबर में अपने एवी कल से अपने को हमारे रमाइलो गप हुई अब संगारी जहां इंटरनेट के पहुंच बा कल से हमन हमारे वेबसाइट www.tikapur.fm.org मोबाइल एप टीकापुर FM एप्स हमारे पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत फिर अपने हो गए सुनिश्चित ठीक है ना मैं आप लोग जानकारी करती बाटू यदि अपने थन जैसे एंड्रॉइड मोबाइल बा एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके टीकापुर FM एप्स हमारे पात्रो नेपाली पात्रो प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कई कि आपने हमें सुने से ठीक है ना मैं जानकारी करा मैं इंटरनेट के पहुंच रहा हूँ सिंगारे और जहां रेडियो टीपा ठीक है रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ज मतलब फिर सुने से ठीक है ना मैं जानकारी करती कार्यक्रम के शुरुआत में श्री गणेश करब एक छोटा रमाइलो गीत से गीत के पास समय एम अपने अंताक्षरी खेलक लगाई देकर भी 091 5 61 255 लाइन खुलेगा

0: बिल्कुल रमाइलो गीत के पाँच एफएम स्वागत बा कार्यक्रममा कार्यक्रममा बाटोमा मिशन के साथ देहेटै बाबु रत्नापुरमा गराउ यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज रेडियो भर्खर खोरा लुबीकाले सुन्तीबाटी रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज मार्फत कार्यक्रम अन्ताक्षरी अपनगलग विशेष कै के गीत गाने इच्छा रहल रुचि रहल सबको सगारुके हमन कल करेक्ट पना एकदमै जरूरी रहत तो फटाफट चाहिए आप लोग हमें डायल कर भी सुनने 91 5 61 255 था 0915612555 एकदम ही हमारे खुला के लिए बाटी फटाफट डायल कर भी कल से अपने को हमारे रमाइलो गफ हुई कहेगी कार्यक्रम में अपने को हमारे रमाइलो गफ हुई ना हो रमाइलो बातचीत हुई ना हो रमाइलो बात कहेगी अपने हुकन मजा मजा गीत संगीत सुने ना हो और संगारे हुए अब तो हमारे संगे गप करे लगा अपने आई सकती हमारे स्टूडियो के लाइन में सुने 91 5 61 255 अर्थात 0915612555 लाइन एकदमै खुला बा और कार्यक्रम में आईबी कल से कुछ भी नहीं हिचकिचा के मई फैन कौन का मई फैन कार्यक्रम में अंताक्षरी खेले से कम मई फैन कार्यक्रम में आई से कम मई फैन कार्यक्रम में सहभागी जनाई से कम कह के सोच बना के कार्यक्रम में आईबी कोयल बटे लाइन में बोलखाना चाहम के उठे हजुर राम राम
1: राम राम हजुर
0: के नारायण जी हो
1: हजुर
0: कसिन बा नारायण जी हाल खबर एकदम गर्मी बा आज फे नारायण जी ने एकदम घाम बा आज ठेके हमन कहाँ से समझली ठके कौन ठाउ से आज हमने याद कैली
1: हमरे लाइकपुर बाटे
0: हजुर ए लाइकपुर से नहीं ओके कार्यक्रम में चाहिँ सहभागी जनैली आज कसिन बा आज के दिन कसिन बा अपने के काम के दिन कसिन बा आज ठीक ठीक व्यापार हुई था कि अपने के ठीक ठीक ग्राहक मिलते कि कसिन बा आज
1: ग्राहक तक ना सब ठीक ठीक बा कह पल अब काम ले मिलल काम तो मिलल रहत कह पल अब काम ले कब गाड़ी चार्ज कोरा दे कब का हो जाए ना काम कह पल मिलती बा खटपट कह पड़ल काम तो चलते गाड़ी चलती बा कह पल
0: ओके कार्यक्रम में सहभागी जनैली आज तो अंताक्षरी खेलना हो गर्मी में गीत गाना मन लागी
1: अरे लग गई हाही में बाटी हरी
0: ओके तो आज सही अपने हमारे संगे अंताक्षरी खेलना दिन हो तो अंताक्षरी तो नहीं खेलती अपने की खेल भी आज
1: नहीं नहीं
0: गीत तो जरूर
1: गीत छोटा छोटा मैगर गीत गा देते
0: ओके ली छोटा छोटा गीत ने मजा रहता अपने के लिए शुरू करी
1: का गा दो तो
0: अब अपने जोन आइट अपने के मन में अपने जोन जानना गाना चाहती हूँ उसी वो है गाय
1: महीना गा दे
0: ले ले शुरू करिए
1: अरे मैना लगल ताली डगड़ी डगड़ी दौड़ती कोई दिक्कत नहीं मिले थी पानी दे जोर पानी लेके आई जाओ खतरे हो जी
0: बिल्कुल बिसाइटी जहाँ छाही बा वो ठाव में जोर पानी पिए मिला तो फिर मजा ही होने रहे ना
1: हजुर हजुर
0: ओके कार्यक्रम में सहभागी जन एकदम खुशी लागल अब एक ठगी बजाब अपने के लागे अपने किन किन सुनाई भी नाम लिए
1: सबसे पहले अपने रत्नापुर में कहे और कार्यक्रम सुनते रेडियो सुनते नुकन मजा लागा ठीक कह पड़ल हाँ सब ठीक मना मना और नारायण चिन्हन चिन्हन चिन्ह सब कुछ हम कहा भाई भाई
0: हजुर राम राम वहाँ फोन कर रही नारायण चौधरी जी हमार नियमित कलर नियमित हमार संगे संपर्क में थे नियमित हमन सही कार्यक्रम में सहभागी जन थे वहां हमें ढेर धन्यवाद देना चाह अधिक टू गीत जोड़ा गीत के बाद समय हम अपने ग्रह पे अंताक्षरी खिलाई भी सुने 91 5 61 255 के लाइन में तब सबके लगे एंजॉय करी रमाइलो गीत गीत के पास समय बैठो

हजुर बेलुकले रमाइलो गीत जोली कार्यक्रममा बाटोमा मिशन मिकेश आदित्य बाबु रत्नापुरमा गरौ। यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz दुपहरिक समय हो। यी दुपहरिक अल्छी समय हकु सत्सम रमाइलो कार्यक्रम अल्छी समय हकु सत्सम हत्सम रह रंगीत कार्यक्रम अल्छी समय हकु सत्सम रमाइलो रसपान कार्यक्रम आफ्नो कनके संगे बाटोमै तो आफ्नो के हाम्रो सँगै एक पन एकदमै जरुरी 091-5-61-2-0-9-1-5-6-1-2-5-5 लाइन एकदमै खुल्ला भा कार्यक्रममा सहभागी जने विकल से अपने को और हमार रमाइलो गफी का नाम है आपको जानकारी करती बारू तो फटाफट चाहिँ डालकर भी कार्यक्रममा सहभागी जनाइए अपने को हमार रमाइलो सहभागिता रमाइलो गफ रमाइलो बातचीत हुई का नाम है आपको जानकारी करना चाहम कहेगी अपने कन संगे विशेष करके अंताक्षरी खेलना हो संगारे हुए काम धंधा के समय फिर आईटी बा किसान दाजू भाई हुकरन के हेरी ना हमारे लगभग ये ज्येष्ठ महीना के अंतिम हफ्ता में बटी अंतिम हफ्ता में अपने हुकन के संगे हमारे चाहे बात बटोना हो और अंतिम हफ्ता में चाहे अपने हुकन संगे अभी हफ्ता वराइटी के आसार लाग जाए हेरी अब आसार लाग लगती के काम के व्यस्तता काम के बिजी हुईना बेला हो जाए तो किसान दाजू भाई उनके कोई कोई तो कहूं कहूं खेतवा पेलना सुरसा के कर उठी भी कहूं पेल गिल फे हुई भी लागत में तर आसार के पहले हफ्ता भीतर लगभग लगभग सब कुछ जाने हसक खेती करना तैयारी करे लगता है तो वह तैयारी के संगे संगे हमारे काम के व्यस्तता बाग है कि हमारे कह सकती और सब कुछ जाने एकदम तैयारी कर उठी भी करना लगती आगे डायल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनती कर भी 091-5-61-2-0-9-1 के लाइन खोले फैंस इंजॉय कर एक ठहर रमाइलो गीत से गीत के पास समय ने बारो डायल करते कर भी 091-5-61-2-0-9-1 लाइन खोले

0: हजुर बेपले रमाइलो गीत के पाछ फ्यान्स स्वागत करती सँगारी अठे बेर के खेची व्यापारिक विश्राम लेना बेला होगी बा के खेची सर्ट कमर्शियल ब्रेक और जाए ब्रेक के पास समय ने बाटू रेडियो सर के कहो बने जे भी अपने से डायल करते कर भी सुने 91.65 तब सम लग एक खेची सर्ट कमर्शियल ब्रेक
1: ना छावा सापन कुछ नहीं कराए सम सांप कुछ नहीं करता लिया वो अपन ही चल गए कुछ कराए वो सब कुछ सांप बिखा थे नहीं रहता
2: बिखा हो कि नहीं हो कसी कसी हिना दाई
3: लिया नेपाल में पा जिना बिखा सापन के विषय में सुन एक थोड़ा ठह गरे था जो उन खास कह खा, राति समय में घर भीतर बैठे से कटल से निबाई फिर सैकत तर कटलक पाछ दे भाग जो निचलना कह सास फैर जो निशेकना में से लक्व हो सकता और रठ डोम जो बड़ा रिसाहा में भी रठ निकर फाट फूले ठ डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह संध्या बिहान देख पड़ निकर कटल से फिर लक्व हो सकता वो और रठ कैली जाटक सांप निकर कटल कल से कटलक भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बैठे था रकत फिर पाती होकर रकत बहना हुई से था उसे का हमार देशक तरह एक सक्कु भूभाग में पा देना बगोपने न फुनका रहना बाधे सांप ई सांप 10 लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक रहा
4: बरखा छा को अनाज बिक्रीना समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना धीर बिना कर था बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा नाशिबेर सापन का दसाई का घटना धीर बिना कर लग पा जाए
5: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नहीं रहा वह फिर यदि सपा 10 डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
1: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथ ही बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसंधान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाण्डौ मिड टाउन का साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कबू का पियर कबू पेन्सिल कबू झल फटाका आज का कना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पियर थी ना कबू पेंसिल हेरे थीन ना झोला फाटल हुई थीन कई एक आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गई संपर्क मोबाइल नंबर 98484-2373।
4: आई हो बड्डो घर कहिया सिर जेबो पाछ से शुरू करल मने घर सिजा सेकल
1: अरे का करू री बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो नहीं करत का कहना हो का
4: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटरा सुगुर बनेल बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
5: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोपराइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98481-43-26।
7: जानकी गाउँपालिकाको गाउँवासीहरूमा हार्दिक अनुरोध
8: नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हक धारा 39 अन्तर्गत बालबालिकाको हकको व्यवस्था भएको र बालबालिका ऐन 2075 बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन 2056 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि गाउँपालिका तत्पर रहेको हुँदा 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरे गराएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वत बदर हुने भएकाले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। साथै बालबालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर ग्यारेज होटल कारखाना गिट्टी बालुवा घरेलु कामदार गाडीमा सहचालक आदिमा नलगाउन 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि निकृष्ट श्रममा नलगाउन धुम्रपान मद्यपान सोतेजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न हुन र अनिवार्य विद्यालय भर्ना गराई नियमित पठन पाठन कार्यमा संलग्न गर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ। कानून विरुद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराए कानून बमोजिम कारवाही हुने बेहोरा समेत सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ।
7: अध्यक्ष गणेश चौधरी बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका समिति
9: हजुर व्यापारिक विश्रामके बाचा पेन्सन स्वागत बा कार्यक्रममा बाटोमा हामी छन् मिके साधे बाबु रत्नपुर मगर यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज सुन्टी बाटी कार्यक्रम अन्ताक्षरी अपिङ्गलक माई मिसनका सँगै अब त्यही ढेर नै बटुवा के मै गर्मी समय हे शीतल शीतल महसुस गर्दै एक ठाउँ रमाइलो गीत जोडम गीतके बाचा मैले बाटो रेडियो छोडेर कहाँ पनि जेबी तसँगलाई एकैछिन इन्जोय गरी यी रमाइलो गीत चाहिँ गीतके बाचा मैले बाटो डायल गर्दै गर्मी 091-561-255 लाइन खुलाइबा

हजुर, बिल्कुल रमाइलो गीत के संगे संगे संघारी लगभग लगभग कार्यक्रम के निर्धारित समय डगर काटे लागल अब टाटा बाबा के जाने वाला हो गया। हमारे यात्रा बदले समृद्धि सुन के साथ दिले अपने एकदमे धन्यवाद। टेक में बैठ के साथ दी हुए बाबू रत्नापुर में गए धन्यवाद। अपने कॉल करके साथ दिले अपने सब कुछ धन्यवाद। बेटी अब गर्मी के समय बा, गर्मी के समय है अपन स्वास्थ्य है ख्याल करती, काम करती, करना जानकारी करती। अंतिम एक छोटा रमाइलो गीत छोटी मैं विषय कार्यक्रम में भेटना बासा करती। आगे से हम राम राम जय देव जय गुरु बाबा शुभ दिन। अब केवल शुभ रहे रेडियो टीकापुर FM सुनते कर दी।

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस गटिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटाका था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: चेली हेदी दई बालाई लोटी पड़ो बुने के बैंक को विवरण दिया पैसा खाता में आ जान छ बुने
5: धई धई बा तुमने लोटी भर रही थी अब
6: आछे ना क्या हो रे चेली लोटरी पड़े तो निको हो बा
5: कभी न भरया लोटी कसरी पड़न छ बा ईशा मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक भाइबर काइमिले आयाले कबै जनपतिया फोने आयाला गई आफ्नो विवरण कबै जन दिया कसैले वित्तीय संस्थाले तुम्हारो पासवर्ड पिन आदि कबैले माग्दैन यो त बैंक आफैले नै माग्दैन सतर्क रहौ ठगी बटे बचौ सिद्धार्थ बैंक पठियै जनहितमी जारी सन्देश
7: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई

0: रोका
1: के भयो किन कराएको यस्तो
0: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
2: एनसेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
1: हो र
0: हो नि एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
3: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एप मगाई लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
4: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वा नन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
5: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
4: तुहार बाट अस्तर तुहार रमपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाएका अन्से कि कत्रा सुगर बनाएका ल बाटी
5: ए ले ले ठिक बा चल हाली भात वट खाई आऊ जाएका हुँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
4: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 98486 39261

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के होस्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई, कब्बू लड़का कभी हेरा कई था, कब्बू पेंसिल हेरा कई था, कब्बू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी, ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कब्बू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़ोक ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुनी।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में, रट गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
4: आज तिमी मेरो वरीपरी किन घुम्दैछ छोरी?
5: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न, लाउन कस्तो रहर लाछ,
4: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले,
5: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सकियो नि।
4: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
5: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
6: न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टीकापुर, न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स मा नया नया डिजाइन का विभिन्न गर गहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुमका, छड्के तिलहरी, बाला, चूरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिना राशन का गर गहनाहरू पाइन्छन्, साथै चाँदी का सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगल साइन को शाखा टीकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98-688-14-799, 98-24-60-25-32। अछाम मंगल साइनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98-24-60-28-25।

0: लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
1: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
2: ओसीएमसी भनेको लैङ्गिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
1: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
2: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैङ्गिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
3: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmcticapur@gmail.com।
4: ए भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन त बाउ, के पाउँछ त्यहाँ?
5: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
6: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
7: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
4: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
8: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतौल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स।
9: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स,
10: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
8: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 9844846673 र 9814680204।
11: आओ आओ, तू पायलट से आईना मत झील कर था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
12: कुछ नहीं हुई सर, पायलट के 15 सफवा रख लू, डर लग के घूमत रहते हूँ, जैसे चेयर से लग लो तो हलचल नहीं कर। मोर सपो का के छापे ना तो पायलट जाके
11: मोर सपो है ना, चलेना तो नहीं चलेगा ना?
12: नहीं चलेना सर।
11: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा पूरा से कह रहा हूँ, मोर सपो देव गोकर से भैया ना चलाए नहीं बिठा सपो मूला से की वाकर मरहल 20 असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल देख पड़ना सप्पा है ना नंग तहाँ साले पकड़ा नहीं भी
12: सर मुआल सप्पा देखना से क्या करना
11: सप्पा मुआल देख पड़ना से थे जात से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुला कुछ देर पास असम के सप्पा दस सकत वह वर्ष से मुआल अवस्था में थे सप्पा हाथ से चलाए नहीं भी बेंतन इतना मा लट्ठी ले चला था मुआल नहीं मुआल कहीं का जाना से भी था
13: मुआल सापन से सावधान रही मुआल वा मार गई सप्पो है ना पकड़ना वा खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासा सम की सपवा दस सिठा संभव हुई सम सपो फोटो खींची वो पहचान कला विज्ञापन से संपर्क करी
14: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में शेयर दिखा
15: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संध्या 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने को स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने कुरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप सम्रपात्र और नेपाली पात्र में फिर सुनती रहलवाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से मंत्री प्रभाव पारी काम देखना मुख्यमंत्री के निर्देशन। भूमि समस्या समाधान के लिए जिला समिति गठन करना सरकार की निर्णय। मंत्री परिषद विस्तार सुधन गुरूङ गृहमंत्री और महावीरपुर नवपरिवर्तन मंत्री। ओस्ताम सथुकन के अवरोध पाथर राष्ट्रीय सभा की बैठक जेठ 28 गते में बैठनागर की स्थगित। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह मंत्री हुकन प्रभावकारी कार्य सम्पादन करना निर्देशन देलबाट मंगलवार आयोजित सत्ता गठबंधन दल के बैठक में बोलती वहां के आपन जिम्मेवारी प्रति गंभीर होके परिणाम देखना करके काम करना मंत्री हुकन निर्देशन देलबाट वहां के जनता हां सरकार में सेपक्षा कलक सेवा प्रभाव हाली पारदर्शी उत्तरदायी बनने आवश्यक कलक ओहतर्फ संबंधित मंत्रालय के मंत्री विशेष ध्यान दे पना बोटिलबाट बैठक में सरकार की गतिविधि विकास आयोजना तथा सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाने विषय में छलफल हुई बुटिल। नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अंतर्गत के भूमि समस्या समाधान समिति के जिला भूमि समस्या समाधान समिति गठन संबंधी निर्णय कलबाट मंत्रालय के हे जेठ 19 गते की निर्णय के अनुसार भूमि संबंधी समस्या समाधान के लिए जिला स्तर में समिति गठन करके कार्यान्वयन करना व्यवस्था मिलेबाट यह निर्णय के अनुसार प्रत्येक जिला में प्रमुख जिला अधिकारी के अध्यक्षता में समिति गठन होना व्यवस्था कलबाट गठित समिति में प्रमुख जिला अधिकारी अध्यक्ष रहना सफे प्रमुख जिला अधिकारी तोकलक जिला स्थित सरकारी कार्यालय के प्रतिनिधि प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जिला समन्वय अधिकारी जिला सदरमुकाम स्थित भूमि प्रशासन कार्यालय के प्रमुख डिवीजन वन कार्यालय के प्रमुख जिला प्रशासन कार्यालय के प्रतिनिधि तथा जिला सदरमुकाम स्थित नापी कार्यालय के प्रमुख सदस्य रहना हुलबाट नापी कार्यालय के प्रमुख सदस्य सचिव के भूमिका निर्वाह करना व्यवस्था कलबाट सरकार के भूमि संबंधी समस्या समाधान प्रभाव कार्य बनाओ नियम अनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करना जिला भूमि समस्या समाधान समिति आवश्यक निर्देशन समय देलकबाट उक्त निर्णय संघ जिला स्तर में भूमि संबंधी विवाद व्यवस्थापन तथा समस्या समाधान के प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुई अपेक्षा कलबाट। खोज खबर मई घड़ी विश्राम विश्राम पासा फिर से सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा।
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
4: ईसीजी सेवा,
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
3: फोन नम्बर 98484 27359 र 98842 73 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
0: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मन्त्री परिषद विस्तार कलबाट मंगलबार गृहमन्त्री सुदन गुरूङ विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन मन्त्री महावीर पुन सफत लेलहुइटीबाट नवनियुक्त दुनु मन्त्रीकी अब राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताकी शपथ ग्रहणकर्तीबाट गुरूङ पूर्व गृहमन्त्री हुलसेफे पुन समेत पूर्व शिक्षा मन्त्रीबाट गुरूङ राष्ट्रपाकी प्रतिनिधि सदस्य हुलबाट फे पुन स्वतन्त्र उम्मेद्वारकी रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुलबाट। राष्ट्रिय सभाकी आज बैठकमा फेरि प्रतिपक्षीय दलकै सांसद थुकुनकी अवरोधकै कारण जेठ 28 गते बिहिबार 1:15 बैठकगरकै स्थगित हुल्बा। राष्ट्रिय सभाकी अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल कार्यसूचीकै अनुसार बैठक आख बढ़ी नागरह कलश फे प्रतिपक्षीय दलकै सांसद थुक्र विरोध जारी रलक बैठक स्थगित हुल्बा। अध्यक्ष दाहाल जनताकी अनुभूति गर्न सरकार हाँ राजनीतिक दल बीच पर्याप्त परामर्श हुने चेकलको सदनमा नाराबाजी गरके बार बार बैठक स्थगित गर पर्ने अवस्था सम्पूर्ण नेपाली जनता सिंगो देश नै प्रभावित बन्न बोटिलोबाट। अध्यक्ष दाहालके सकुश साझा समस्या समाधान गर्न सरकारकै तर्फमा सिफे तत्परताकै साथ समय सापेक्ष रूपमा समस्या सम्बोधन हुइपर्नाफे उपस्थिति मन्त्री हुकुनकी ध्यान आकर्षण कार्यालयबाट बैठकमा सांसद र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेपाल भारतकी सीमा मिस्ल कैके दिलक अभिव्यक्ति के सरकारी टहमा कोनो प्रमाण नै हुलक असिन संवेदनशील विषयमा बोलक सन्धि तथा ऐतिहासिक दस्तावेजसँग आधार बनाइपर्नमा जोड़ दिलबाट। सांसद र राष्ट्रिय अखण्डता संविधान सुरक्षा निकाय तथा छिमेकी राष्ट्रसंघकै सम्बन्धमा असर पर्न खालके अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री शाह दिलक आरोप लगेकी ऊ अभिव्यक्ति फिर्ता लेके सदनमा सम्बोधन गर्नपर्नमा कलबाट। सांसद र अर्थमन्त्री डाक्टर सोनी मुवागले प्रस्तुत करलक आर्थिक विधेयकमा से 16 पृष्ठ हटेर करके दर भावमा हेरफेर कलक तथा नेपाल राजपत्र तथा संसदीय प्रणालीसँग सम्बन्धित कागजात वेबसाइट हटाएके पुनः प्रस्तुत कलक विषयमा असिन छानबिन ओ जवाबदेहिता सुनिश्चित गराउनमा जोड़ दिलबाट। खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछ फेरि विश्वतिर विश्राम सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
5: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल।
6: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो दिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
5: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टुफे ओस्ट बनी हो ना वट्टफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
7: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
8: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98484 43 26।
9: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
10: असार 6 गते पहिलो शनिबार
9: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खट्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया गण्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
11: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
10: आउने आगामी दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
9: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868800008 र 9825637772।
11: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
10: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बञ्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585808।
0: मन्त्री परिषद बैठक पूर्व गृहमन्त्री सुदन गुरूङकै सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समिति पेश कलक प्रतिवेदन ग्रहण गर्न निर्णय कलबाट मंगलबार सिंहदरबारमा बैठक मन्त्री परिषद बैठक असि निर्णय कलबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता सस्मित पोखरेल के कहाई पूर्व गृहमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय सुदन गुरूङकै सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समिति पेश कलक प्रतिवेदन ग्रहण गर्न निर्णय हुनुभयो। उहाँकै अनुसार प्रतिवेदन अध्ययन कलक थप निर्णय हुन वा मन्त्री परिषद बैठकी निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संचारकर्मी हाँधर्की जिज्ञासाकै जवाब दिनाभरि प्रवक्ता पोखरेल प्रतिवेदन ग्रहण गर्न पाछ आवश्यक प्रक्रिया आघ बढ़ना बोटिलोबाट उहाँकै तत्काल गृहमन्त्री नियुक्त प्रक्रिया आघ बढ़ना विषयमा कोनो निर्णय नै हुलो कुल्ले कलबाट आजकै बैठकमा सेसिन गर्न निर्णय फेर्नै हो कि सहकर्के सरकार तर अरूण जलविद्युत आयोजना लोबर न्याण्डी खोला जलविद्युत आयोजना खुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना तान्दी खोला जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन निजामती सेवा स्रो सम्बन्धन नियमावली 2083 स्वीकृत गर्न ओ विशाल कुमार भण्डारी दोलखा के अध्यक्षतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 9 सदस्य तदर्थ समिति गठन गर्न निर्णय कलबाट यही समाचारसँग खोज खबर वाले जनाइसे पहिले खबरको मुख्य शीर्षक फेरिसेक्छ। मन्त्रीमा प्रभावकारी काम देखेन मुख्यमन्त्रीकी निर्देशन। भूमि समस्या समाधानकै लागि जिल्ला समिति गठन गर्न सरकारकी निर्णय। मन्त्री परिषद विस्तार सुदन गुरूङ गृहमन्त्री र महावीरपुर नवपरिवर्तन मन्त्री। सांसद थुपुनकी अवरोध पाछ राष्ट्रिय सभाकी बैठक जेठ 28 गतेमा बैठक तर्की स्थगित। डिटाबुकला खोज खबर रह प्राविधिक मित्र रत्नापुर मगरह धन्यवाद। डिटाबुकला खोज खबर से मई सीता चौधरी विदाई टू एगार पास 6 बजे खोज खबर सुन सिक्वी सामुदायिक रेडियो टीका अपराधन सुनती रवि राम राम।

0: मैं कमिल साहब।
1: आओ आओ, तू पायलट से आईना माता झील कर रहा था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
0: कुछ नहीं हुई सर, पायलट के 15 सफवा रख लू, सर लग के घूमक रहते हो, जैसे चेयर सर लग में हलचल नहीं कर, मोर सब कैठा पहनो तो पायलट जाके
1: मोर सब को ना चलेना तो नहीं चलेगा ना?
0: नहीं चलेगा सर।
1: विद्यार्थी भैया बाप मुखरा मुझसे कह रहा हूँ मोर सब देखो कल से भैया न चलाए नहीं बिठा सपा मूला से भी वाकर में रहा बीस असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सपा मुआल देख पड़ना सपा है ना नमता हाथ साले पकड़ा नहीं भी
0: सर मुआल सपा देखना से आ करना
1: सपा मुआल से देख पड़ना से थे जात से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुला कुछ देर पास असम थे सपा दस सकत वह उससे मुआल अवस्था में फिर सपा हाथ से चलाए नहीं भी बेन तो इतना मल अच्छी ले चला था मुआल नहीं मुआल कहीं का जाना सीखी था
2: मुआल सापन से सावधान रही मुआलवा मार्गी सपोहना पकड़ना वा खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासन की सपवा दस सिट्ठा संभव हुई सम सबको फोटो खींची व पहचान कला विज्ञान से संपर्क करी
3: सर्पदंग से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंग से उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता में रख लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में ज्यादा शेयर दिखा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भयो म त अब
6: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रेक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
5: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
6: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
7: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
5: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
8: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
6: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 9848518828
5: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
6: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
5: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
6: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
5: अब त म ढुक्क
8: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
6: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
9: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: सामाजिक सञ्जालमी निकेरी जाँची बुझी भर बैंकको आधिकारिक प्रोफाइल मात्रै फलोहरू, कसैले लिंक खोल्लाए अगाडि त्यो क्याको लागि हो, कहिले पठाएको हो रे, कहाँ जान्छ, निकेरी बुझी भर खुल्याएको वेबसाइटको URL चेक गरौं।
1: अप्रिय घटना हुन नदिनलाई समय समयमी आफ्नो पासवर्ड बदलौं। आफूलाई केही शंका लागेले बैंकलाई छिट्टै खबर गरौं।
2: सतर्क रहौं, ठगीबाटै बचौं।
1: सिद्धार्थ बैंक पठाई जनहितमी जारी सन्देश।
3: सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँभरिलाई।
4: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
5: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
6: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
4: डेलिभरीका लागि
6: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
4: टिकापुर कैलाली
7: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772।
8: स्वास्थ्यका लागि पानी।
9: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना हुने न पट्टा नि पैना त
10: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
9: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाएका अन्से के कत्रा सुघर बनाएका अन्ला बाटी
10: ए ले ले ठिक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाए कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
9: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 9864041208 और 9846639261।

0: बुका पिएर इठ कबु पेन्सिल रेठ कबु झलै फटाका आज इठ का कना हो बाबा फिर उस्ता बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नि हेरत
1: ओहो ई बुढा लिख में का हुई थी जलम भर भर बरैती रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कैठ कबु पेन्सिल हेरा कैठ कबु झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लान नि छिकठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनब वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रदगैया झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पियरी थी ना कबू पेंसिल रहीथिन ना झोला फाटल हुई थी कैक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रदगैया झोला उद्योग में रदगैया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रदगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर
4: अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ
3: ससानो कुरामा तनाव हुने
4: बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने
3: कुलटमा लाग्ने

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो।
1: जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या।
0: यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
2: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
2: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरा पारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
3: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
4: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्रेक्टर, बस, ट्रक, टिफर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
2: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 48 57 18 28।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
5: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकल छु।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तो मैं अब ही जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
7: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
2: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 98-49-85-18-08।

0: कबू का पी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटा का आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बरई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू फसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: टीकापुर नगर पालिका को अत्यंत जरूरी सूचना जन्म मृत्यु विवाह सम्बन्ध विच्छेद र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना घटेको 35 दिन भित्र आफ्नो स्थायी ठेगानामा रहेको वडा कार्यालयमा गई अनिवार्य रूपमा दर्ता गरौं र गराऊ विद्यालय भर्ना गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राहदानी बनाउन नाबालक परिचय पत्र बनाउन बैंक खाता खोल्न तथा राज्यबाट प्रदान गरिने अन्य सेवा लिन व्यक्तिगत घटना दर्ता आवश्यक हुने भएकाले आजै वडा कार्यालय जाऊ व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो नभुल्नुहोस् है व्यक्तिगत घटना घटेको 35 दिन भित्र व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौं जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिऊ थप जानकारीका लागि टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाई र सम्बन्धित वडा कार्यालय

0: युवा प्रांजल प्रांजल युवा
1: का होइल बाबू अपने कलकल आइत रही अपने का करे कलकल आइत रही ले यु भुइया में के हो का करे भुइया में ढनवा नाल बाटी
0: सुनिना दादू हमरा दुनू जना बोना में घास काटल रही मोर संग भी सब पका द नीना दादू हाली का करना होई एही ना सत्य हो पुकार के नो पुकार कोले से हे रहा
1: ओहो ऐसिन बेला में एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के अस्या लाग के बैठनी हुई यह लगे बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा फोन कई दादू अपने नहीं आते है ना संघरिया ध्यान दी हेलो मुकेश तू जत ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ तो यहाँ एक जना बाबू है ना सपवा काट के ना इमरजेंसी पर गिन तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल राजमार्ग 84 मीटर पश्चिम बाव पांचर बाटी ना हमरा मुकेश जत ही आओ हाँ सबको काम छोड़
2: बैठा संतोष मैं मोटरसाइकिल लेके आई गिनू
1: सुनी बाबू सपो कटलक मने है ना जत्र साइकिल झटते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा डाले पड़ता ऐसी बेला में सबसे झटते हुई ना यातायात के साधन बाजे पड़ता यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकले से अपने वो सवारी चालक के बीच सपो कटलक मने है ना।